0: हाँ जी, वेलकम बैक जी। उम्मीद करते हैं कि तुसी अज दा ये प्रोग्राम इंजॉय कर रहे होवोगे और गीत जरूर पसंद कीता होवेगा। अज सवेर दियां इंटरनेशनल हेडलाइंस विच हिमालयन रीजन तो एक बहुत ही गंभीर डिवेलपिंग स्टोरी सामने आई है। ABC दी लाइव कवरेज मुताबक फ्लैश फ्लडिंग तो बाद सैकड़े ही लोगों के मिसिंग होने दी रिपोर्ट्स ने, ते हेडलाइन रिपोर्टिंग विच 34 ऑस्ट्रेलियंस का जिक्र भी किया गया। डिपार्टमेंट ऑफ फॉरन अफेयर्स एंड ट्रेड ने पुष्टि की है कि ऑस्ट्रेलियंस उस इलाके विच मौजूद सन। ये सिचुएशन तेजी नाल बदल रही है। जदों असी ये खबर ली उदों फिगर्स यही सीगियां। जदों अजिहे ट्रैजडी की खबर आउंदी आ तां रेडियो ते नंबर दसने जरूरी ने, पर नंबर दे पिछे इंसानां नूं याद रखना होर भी जरूरी है। किसे दा पुत्तर हो सकदा है, किसे दी धी ते किसे दे मापे। कोई ट्रैवलर जिसनूं घर फोन करके क्या होवे, चिंता ना करियो मैं ठीक हाँ, ते फिर कम्यूनिकेशन बंद हो गया होवे। अजिहे समय सोशल मीडिया ते अनवेरीफाइड वीडियोज़ ते मैसेजेस बहुत तेजी नाल सर्कुलेट होंदे ने। साडी बेनती आ कि कोई ड्रामेटिक क्लिप वेख के तुरंत फॉरवर्ड ना करो। ऑफिशियल इनफॉरमेशन ते एस्टैबलिश्ड न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन नूं प्रायोरिटी दवो। जे तुहाडा कोई फैमिली मैंबर या जानकार अफेक्टेड रीजन विच होवे तां ऑफिशियल कौंसलर चैनल्स नाल संपर्क जरूर करो। क्लाइमेट ते एक्सट्रीम वैदर इवेंट सानू एक होर गल याद दवाउंदे ने कि असी टेक्नोलॉजी विच किन्ने भी अगे चले जाइए, कुदरत दे सामने ह्यूमिलिटी बहुत जरूरी हुंदी आ। इंडिया वल वेखिए ते मानसून नू लैके भी कंसर्न बनी हुई आ। खबरां दे मुताबक 24 अगस्त नू रिपोर्ट कीता कि इंडिया विच सीजनल रेनफॉल उस समय लोंग टर्म एवरेज तो लगभग 13% घट सी, ते 2026 मानसून लगभग 2 दहाकियां विच सब तो कमजोर मानसून विच एक बन सकता है। कॉटन, सोयाबीन, कॉर्न अते दालां वर्गियां क्रॉप्स दे असर दा रिस्क दस्या जा सकता है। हुण ऑस्ट्रेलिया विच बैठे साडे बहुत सारे पंजाबी परिवारां लई ये खबर दूर दी नहीं, साडे घर दी गल लगदी आ, क्योंकि साडियां जड़ां खेती नाल जुड़ियां होईयां ने। भावें असी मेलबर्न, सिडनी, ब्रिस्बेन, एडलेड ते या फिर पर्थ विच रहिंदे होईए, पिंड विच खेत अजे भी किसे चाचे कोल या ताए कोल या किसे भरा कोल ते या फिर किसे अपने जानण वाले कोल ने। किसे माँ प्यो दी आमदन उस फसल नाल जुड़ी है, इसलिए वैदर रिपोर्ट दी भी कई पंजाबी फैमिलीज लई फैमिली रिपोर्ट बन जाती है। कि तुहानू इहो जी खबर अफेक्ट कर रही है, तुसीं की सोचते हो, साढ़े नाल सांझ पाउण लई वट्सएप के उपर तुसीं मैसेज कर सकते हो 0434-233-971। लैंदे हां एक छोटी जी ब्रेक, ब्रेक तो बाद आके फिर तुहाडे नाल पाउने आ सांझ।
1: जनगणना की रात 11 अगस्त मंगलवार सी। हर घर लई जनगणना पूरी करनी लाजमी है। जनगणना पूरी करन लई हाले भी समा है। census.abs.gov.au/punjabi ते जाओ जा 1800-181-2227 ते फोन करो। ऑस्ट्रेलियाई अंकड़ा ब्यूरो कैनबरा वल्लों अधिकारत।